0: सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन।
1: अन्य थप जानकारीको लागि
0: सम्पर्क नम्बर 0494-12-020।
2: धुलिखेल अस्पताल दोलखा, अस्पताल दोलखा।